की जुगत गुरु के पुत्र हो गए ते गुरु के पुत्र सत्संगी जिथे मिलके बैठ के प्रभु जस करदे ने जेड़ा आके उन्हां सत्संगियां च रल गया गुरु पुत्रां च रल गया प्यार दे रंग च रस्ता होया प्रभु जस कर रहा है प्रभु जस मान रहा है और यह धर्म का मार्ग धरती दे धरन वाले निरंकार प्रभु ने गुरु दे रूप च आप धारण किया आप बनाया इस मार्ग ते जेड़े चलते ने धर्म पंथ तरयो धरनी तर आप जेड़े इस मार्ग ते चलते ने रहे लिव तार ना तावत है भटकना मुक जाती है लिव जुड़ जाती है जीवन का आनंद लेंदे ने भगत भट्ट मथुरा जी कहंदे ने कहंदे ने वड्डे भागा वाले ने लोग मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छित ही फल पावत है उन्हां दे मन दी इच्छा प्रभु प्यार नू प्राप्त करना और ये फल प्राप्त कर दे ते कहंदे ने उन्हां नू फिर रब दे सुत सूरज दे पुत्र धर्मराज दा डर नहीं रहिंदा रब के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है जेड़े गुरु चरणा नाल मन जोड़ लेंदे ने उन्हां नू नरक दा डर नहीं जम दा डर नहीं ते ना ही किसे सुर्ग दी इच्छा रह जांदी गुरु चरणा दे प्यार च गड़ूंद होए आनंद लेंदे ने रंग च रते होए

कि ऐ मालिक एक जेवा होन करके मैं तेरे सारे गुण नहीं गा सकता, क्योंकि तू ते जल छल और मैयल दे विच पूरा पूरा पूरा पूरा वर्त रहा है। जिथे किथे देखदा हाँ तू ही तू है। ते मालिक जिथे मेरी जेवा एक है उथे मेरा मुंह भी एक है। मुख हर आराधे मेरा राम, ता जो जम दे मार्ग ते मैनू कोई दुख ना देवे। कहिंदे ने जमां दी मार तों बचण वास्ते मैं तेरा नाम जपना चाहुंदा हाँ। कहिंदे ने जिथे किथे देखदा हाँ तू ही तू दिखाई दिंदा है, और तेरा जाप कर करके मेरा परम मोह ते जेड़े मेरे विकार हन ओ सारे नठ जांदे हन। जिथे

तब तुम ते लेना, तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता,

तुर बिंदु जा और न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। क्या कहिए किस आस सुनाइए, जो कहना सब प्रभु जी पास, सब किता तेरा वरते, सदा सदा तेरी आस। जिदे वड्याई ता तेरी वड्याई।

जो तो करे करावे स्वामी हा मसलत परवा चरण सर्व हम अनाथ ना फतन अपनी कृपा करे चरण कमल नानक आरा दे किस दिन आम के पत परमेश्वर गत मरायण तन गोपाल गुण साखी।

सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे लोसे आकार, सच्चे तेरे करने सर विचार, सच्चा तेरा अमृतचा दीवान, सच्चा तेरा उपनिषचा फरमान, सच्चा तेरा कर्म, सच्चा निशान, सच्चे तुद आखें ला करोड़, सच्चा है सब दान, सच्चा है सब जोर, सच्ची तेरी सिफत, सच्ची साला, सच्ची तेरी कुदरत, सच्चे पातशाह, नानक सच तिहाइन सच।

जोगी सुन के हवन जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम रंजन काया का कार सतिया मन संतोख उपजे देने का विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे सिंध संसार चोरा जारा तय कूड़ियारा खरा बावे कार एक होंदा खाए चले हैं अथाऊ तेरा बेकाई कार जल थल जिया पुरिया नो आकार आकार कोई जी आखे हैं सुख है जाने तिलक तेरी सार नानक भगता पुख सलाहन सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतियां जल जल रोवे बपुड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुख है जिन विचों मोह चुकाया।

मैं पीर गुरु गए दारू की इस माह कृपा करे जी अपनी गुर का शब्द माह नान कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी सेव की संतोखी जिन सचो सच ते आया उन्नी बंदे पैर रखियो कर सुकृत धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंधना।

अलमल खाई सिर छाई पाई मूर खंदे पतकवाई बिनाए कि ठाए ना पाई रहे बेबाणी मणि मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुर।

जाने छड़ कहे करवार सर को बुरा पे हुए काट न कोई आखे पात्रवाना पीछे पाईए ता नानक तोलिया जापे वदी सो जग नानका सच्चा देखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सोए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी देखे पत्त है चंगे से ही के पौड़ी तुलकर जिना को तुर पाया ताकि अपनी खसम ते आया न जलता के उसके चनाई तुद वेख की जग तू आया इकरान।

दरबार प्रसन्न मुंडा जब देता काहे दीवाने को कलमे का हम तुम हमें दर ले लिखा पीर छुटे नान का जो तेल पौड़ी आप ही करना कियो करा पे ही तय सारी है देख ही तय अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया तो चल सुन सब कोई आई वारी है जिसके लिए प्राण।

पहला दूजा एक नहीं आशकी दूजा लगे जाए नानक आस काटिए सतगुरु समाए चंगे चंगा कर मन मंदे मंदा हो आशक ए ना किए जे लिखे वरते सोए नानक दोवें कुड़ियां खाए ना खाई माए मोड़ी सिरा सुपाइए सो साहिब सदा संभालिए जुटी सकालिया बना साकाल बुरी क्यों गालिए मंदा मन दिल नहीं नजर निहालिए जो साहिब नाल नहारिए।

तन जियो तैको जग में, तन जियो तैको जग में, मुक्ते हर चित्त में युद्ध विचार।

बुद्ध सदीप जो उजियारे ज्ञाने की बढ़ने मनो हाथ ले ज्ञाने की बढ़ने।

तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया, एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था कि हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती, यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतने निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।

सतगुरु कहंदे ने इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, ते जन्मा जन्मा दी मैल नाले मन काला भी हो गया, ते मैल नाल पारा भी।

विश्राम दी भी जरूरत नहीं, दो घड़ियां बहने गुरमुखा फिर असा चल दे बनने, पर भोजन तो कर लो ना। आवेखो कई लोग ब्राह्मण ऋषि मुनि तपी भोजन पे करते ने, यथाशक्त सेवा भी करदा। ए आज नहीं, ए रोज ही ऐसा चलता है। सतगुरु कहन लगे भाई फिर तो तेन कोई तगड़ी कमाई होवेगी, की कम करते हो तुसी? जिस वेले आखिया ना की कम करते हो, कदे अपने वल वेंदा है, कदे बाबे वल वेंदा है।

चोर की हमा परे न कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। पर तू सच बोले है, असी खुश होए हैं। बाबा जी खुश होए हैं तो फिर मेरे घरों को खेते ना ना जाओ, दो प्रसादे छक लो। सतगुरु कह लगे फिर कदे आवांगे ते छकांगे, हुण असी चलने। पर जे तू चोरी ना करें ते चंगा, ए माड़ा काम है। कहन लगे बाबा एक होर मैं सच बोला, ए चोरी मेरे कोलू छुटनी कोई नहीं। एक होर मैं सच बोलदा, चोरी नहीं मैं छड़ सकता। सतगुरु कहन लगे ना छड़, पर तू सच बोलिया ना, सदा सच बोली, असी ते जा रहे हैं, वादा कर सच बोलेगा। हां बाबा मैं वादा करदा सच बोलांगा। सतगुरु कहन लगे दो बचन होर साडे चेते रखे, गरीब मार ना करी ते लून खा के हराम ना करी। सच बोली गरीब मार ना करी ते लून खा के हराम ना करी। ए तीन बचन चेते रख, भाई करी जा चोरी जे तू नहीं मुड़ सकता।

अमृत, अमृत की है, अमृत है परमेश्वर दा नाम, अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तैयार करके सिखा नु पियाया ते खालसा पंथ साजिया। पर इस अमृत दी कहानी बड़ी लंबी, चार युग होए ने, सत युग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग। हर युग विच अमृत पीता गया, पर अमृत पीण दा टंग वखरा, अमृत लभण दा टंग वखरा। एक गल होर, कुछ लोकां अमृत पीता पहलिया युगां विच, अमर होने वास्ते कि सानू मौत ना आवे, कोई दुख लागे ना आवे, अपने वास्ते अमृत पीता अपने भले वास्ते। पर जेड़ा अमृत धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिखा नु पियाया, वो अमृत आपा वारन वास्ते, जुलम खत्म करन वास्ते, मजलूमां दी रखिया करन वास्ते। तो आओ विचार करिए, पहला सतयुग बारे के सतयुग विच ए अमृत किस तरह मिलिया ते किस तरह पीता गया। पहला हिंदू मत अनुसार कथा, उस तो बाद गुरमत अनुसार।

एक किस्सा तरती तेन से पानी मनिया गया समुंदर बड़ा वट है। एक वरी देवतिया ने विचार की थी देखिए ता सही एडा वड़ा समुंदर है इस विच की चीज है केड़ी केड़ी वस्तु है पर एडे वड़े समुंदर विचों चीजा लभनिया ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा सी। सलाह कीती सारे क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदों मिलेगा जदों आपां दही नू रिड़कांगे ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है रस्से दी लोड़ है समुंदर नू रिड़कण वास्ते भी मदानी चाहिदी रस्सा चाहिदा पर समुंदर अथाह है एडे वड्डे समुंदर वास्ते लकड़ दी मदानी बनानी बड़ी औखी। तां सारियां देवतियां सलाह करके मंदराचल पर्वत नू मदानी बनाया शेषनाग नू रस्सा बनाया। शेषनाग नू उस पर्वत दे द्वाले लपेटिया गया एक पासिओं उस सप नू देवतिया ने फड़िया एक पासिओं दैंता ने देवतिया विच विष्णु भगवान इंदर आदिक देवते ने दूसरे पासे दैंत बड़ी शक्ति ते ताकत वाले। एक वरी साप नू शेष नाग नू देवत्या ने अपने वाल खिचिया एक वरी दैंता ने साप नू शेष नाग नू अपने वाल खिचिया ते ओ जड़ा पर्वत सी उस समुंदर दे विच इस तरह घूमन लग पिया जिस तरह चाटी दे विच मदानी घूमदी। देवते उस शेषनाग नू अपने वाल खिचदे ने दैंत अपने वाल खिचदे ने ते पर्वत जिहड़ा है उस समुंदर दे विच घूम रहे है। बड़ियां भयानक लहरां उठियां जदों लहरां उठियां ते सारियां तों पहलां जहर निकलिया जहर बड़ा खतरनाक सी धरती ते सुटदे ने तां नुकसान बड़ा हुंदा। ओह जहर शिवजी भगवान नूं पीण वास्ते बेनती कीती गई ओह सारा जहर शिवजी भगवान ने पीता। उस जहर दा असर शिवजी भगवान ते भी होया उन्हां दे गले दा रंग नीला पै गया इस करके शिवजी भगवान नूं लोक नीलकंठ भगवान करके भी याद करदे। जहर तों बाद अनेकां वस्तुआं निकलियां जिन्हां विच काम तीन गऊ पारजात दरखत लक्ष्मी अनेकां वस्तुआं निकलियां लक्ष्मी नूं विष्णु भगवान जी ने अपना लिया पारजात दरखत नूं इंद्र देवता अपने स्वर्गां विच लै गया जिथे अनेकां चीजां निकलियां उथे अमृत दा कड़ा भी निकलिया पर ए अमृत दा कड़ा दैंतां दे हाथ लग गया।

लावते कुछ नहीं। श्री रामचंद्र दे छड़े होए कोड़े नु फड़ लिया। पिछे सेना सी, सेनापति ने क्या बचियो कोड़ा छड़ दियो। पर दोनों भरा कहन लगे छतरी हां इस तरह दे कोड़ा छड़ दे नहीं, जे हिम्मत है ते छड़ा लो। लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई विच दोनों भरावां ने सेना दा बुरी तरह नाश कीता। इथों तक हनुमान नूं भी दरख्त दे नाल बन दिता। लक्ष्मण वर्गे योधे भी दोनों भरावां ते काबू ना पा सके। आखिर श्री रामचंद्र नूं आप लड़न वास्ते आना पिया। इस लड़ाई दे विच श्री रामचंद्र मुर्शद हो गए। ता उस वक्त सीता जी नूं पता लगा। उन आके क्या बच्चियो एहो ही तुहाडे पिता श्री रामचंद्र हन। उदों पता लगा कि श्री रामचंद्र एहो ही नहीं जिहड़े साडे पिता ने। तां लिखिया है उस वक्त अमृत दा कड़ा फिर दोबारा मंगाया गया। उस अमृत दे नाल श्री रामचंद्र अते बाकियां नूं सुरत विच लियांदा। जिहड़ा अमृत बचिया जगह पुट के उस नूं दब दिता गया। त्रेते विच इह अमृत इस तरह प्राप्त कीता ते लिखिया है कि जिस जगह ए अमृत दा कड़ा दबिया गया कलयुग दे विच ए जगह प्रगट हुई। इस जगह धन गुरु नानक साहब ने भी आके चरण पाए और इस जगह नूं अजकल दरबार साहब श्री अमृतसर करके भी याद कीता जांदा है।

एक गुफा च बह जा, करोड़ा करोड़ा साल हवा खा के हवा पी के तेरा नाम जपा, सुपने विच भी मैं सोवा ना, इन्ना तेरा नाम जपा पर अकाल पुरख

सुत कंधे ने पुत्र धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख न कहते ने अकाल पुरख तुसा क्या सी मैं अपना सुत तोहे निवाजा पंथ प्राचुर करबे को साजा ऐ दुष्ट दमन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पहले जन्म का नाम दुष्ट दमन सी ऐ दुष्ट दमन मैं तैनू अपना पुत्र बना के इस दुनिया ते भेज रहे हैं एक नवा पंथ चलाण वास्ते ऐ अकाल पुरख हुण मैनू दस मैं कहो जी शकल कहो जी सूरत इंसान नूं देया कहो जिहा मैं

पंडितां दी प्रीख्या ले दो लंगर लाए, एक विच मास बनाया, एक लंगर सादा बनाया। ते सहबा ने कहा जेड़ा मास वाला लंगर छकेगा ओनू बहुत ही माया मिलेगी, जेड़ा सादा लंगर छकेगा ओनू घट माया मिलेगी। मास खाण दे नाल सोने दियां मोहरां ज्यादा मिलनियां ने, ये सोच के बहुते मास वाले पासे बैठ गए, सादे पासे घट बैठे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिन्होंने सादा लंगर खादा उन्हां पंडितां नूं चोखी माया दित्ती, ते जिन्होंने मास वाला लंगर खादा जिन्नी कही सी उन्नी उन्नी माया उन्हां नूं दित्ती। पर इन्हां वल्लों भी मन उदास हो गया कि जिहड़ा आदमी माया बदले अपने धर्म ते पक्का नहीं रह सकदा, ओ जुल्म दा

वसाखी वाले दिन बड़ा भारी इकट्ठ किया। हिंदुस्तान का बादशाह उस वक्त औरंगजेब सी। औरंगजेब के जासूसा ने औरंगजेब नू जड़ी खबर भेजी, उहदे विच लिखे है तकरीबन 50,000 के करीब लोगों का इकट्ठ सी। आनंदपुर साहब संगत बैठी, कीर्तन हो रहा, बड़ा आनंद आ रहा। सिंघासन ते गुरु साहब जी विराजमान ने। अचानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चेहरे का रंग बदली होया, चेहरे ते कठोरता आ गई। म्यान विचों कृपान खिंची ते ललकार के कहा, साध संगत मैनू एक सिर की लोड़, पहला तो किसी को समझ ही ना आई। जदों दोबारा कहा, मैनू एक सिर की लोड़ है, हर पासे सहम छा गया कि यह की हो गया। गुरु साहब जी अपने सिखां दे सिर मंगन लग पए। तीसरी बारी सिर मंगया।

दूर दूर भज गए सन, भजे भी जा रहे ने ते पिछे मुड़ मुड़ के भी देखते जाते ने, कोई फड़न ते नहीं आ रहे। पर पंजवी तो बाद गुरु साहब जी दोबारा नहीं आए, जिहड़े बैठे सन प्यारो भी करते पर समझ नहीं आती कि गुरु साहब जी सिर क्यों मंगते। बड़ी देर हो गई बैठे उड़ीकते पए ने, हुण गुरु साहब जी उस तंबू विचों बाहर निकले, कृपान म्यान विच है, चेहरे ते हुण रौनक प्यार है। वो पंजो जिन्हां दे सिर वड्डे सन वो ते जिउंदे ने, इक वर्गे कपड़े पाए ने, गात्रे कृपान, सोहणियां दस्तारां, हत्थां विच कड़े, तेड़ कशहरे, हाथ जुड़े ने। पंजो जने पिछे पिछे में आ रहे ने, जिवें अगे चंद ते पिछे सितारे तुरे आंदे। गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह अपने सिंघासन ते बैठ गए, सामने सर्वलोह दा बाटा पे है जिद विच पानी पाए, विशकार दो तारा खंडा रखे। तन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह हाथ दे नाल खंडा हिलान लग पे पानी दे विच, ते मुंह दे नाल बाणी पढ़न लग पे, अपनी निगाह खंडे ते टिकाईए। खंडा पानी विच हिला रहे ने, मानो बाणी नूं खंडे जरिए पानी विच घोल के

एक गल कह के समाप्ति करा। कहंदे ने परंगरेटा गुरु का बेटा गुरु तेग बहादुर साहब जी दा आसीस एक कपड़े विच लपेट के जदों श्री आनंदपुर साहिब पहुंचे है गुरु कलगीधर पातशाह 9 साल दे छोटे जे बच्चे सारियां संगतां माता गुजरी जी जिन्ना 26 साल भोरे विच बैठ के गुरु तेग बहादुर साहिब जी दा साथ दिता ओ माता जदों वेख्या अपने सरताज दा आसीस खून नाल लथपथ होया होया माता वेख के सहारण ना कर सकी गंगा जमुना वह तुरिया ओ मेरा मालिक वैराग रूप गुरु तेग बहादुर जिन्हां दियां अखां विचों कदी नीर बंद ही नहीं होया इतना वैराग जिथे पढ़ो वैराग ही वैराग मेरे पातशाह पुछदे ने रंगरेटे फिर की होया कहन लगा जी तड़ पिया सी औरंगजेब ने ऐलानिया किया सी कोई होवे गुरु का सिख जेड़ा तड़ चुक लवे पातशाह पुछदे ने उत्थे कोई सिख नहीं सी 250 साल सिखी का प्रचार हुंदिया उथे कोई सिख नहीं सी पातशाह सिख ते है सन पर डरदे सी फिर पहचान भी कोई नहीं सी कौन खड़ा है पातशाह ने आख्या खड़े सन हां खड़े सन पर छाती ते हाथ तरके कोई नहीं सी कहंदा मैं गुरु का सिख हां उथे गुरु कलगीधर जी ने आख्या फिर मैं ऐसा सिंह सजावांगा ओ तां दुहाई पा के आखेगा मैं सिख नहीं पर लोका ने आखना तू सिख है तेरी दस्तार दसदी पई है तू सिख है तेरा कड़ा दस रहा है तू सिख है भावे ओ दुनिया नू धोखे विच रखण लई कह देवे मैं सिख नहीं पर लोका ने आखड़ा तेरा दाड़ा तेरे केस तेरी दस्तार तेरी कृपान दसदी पई है तू सिख है मैं ऐसा सिंह सजावांगा जेड़ा छुप नहीं सकेगा उथे पातशाह ने ऐलान किया और फिर तुहाडा रूप दिता ए गुरु के सिखां दा जो प्रगट भया खालसा पर देण गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी कितनी प्यारी बाणी मेरे पातशाह ने उच्चारण कीती है

मेरी चिंता मिट गई है और ना मैनू डर आउंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी, इसलिए कि तू मेरा सारिया थावां ते राखी करना, सारिया थावां ते तू मेरा राखा है। जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा, मैनू डर किसदा। जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी, जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई बिपता संसार की सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैनू, क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते। इसे लिए मालक सतगुर सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, हजूर ने बड़े माण विच बड़े जोर विच किया कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावें मैं अग विच भावें मैं देग विच भावें तत्तियां रेतां सीस ते पईयां पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी। ये कौन कहेगा? खसम वाला, मालक वाला, गुरु वाला जिहड़ा है ही बेगुरा, वो कहेगा कि जिसनू कदी पिता की गोद विच बैठन का सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया, वो माण की कर सकता किसे ते। जिसने कदी पिता कोलो अमृत ही नहीं पीता, वो कह सकता है कि मेरा बापू मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा? नहीं, नहीं कह सकेगा, उन्हूं अपनी कमजोरी का पता है। लेकिन सतगुर सच्चा पातशाह बड़े तान नाल बड़े माण नाल हजूर फरमाते ने, ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई। राम नाम औखद दिया एकै लिव लाई, राख लिए तिन रखन हार सा ब्याध मटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पए। उस माण विच आके तान विच आके असी कौन हाँ? सारे बच्चे सारा परिवार सतगुरु जी का, बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु, सतगुरु परिवार का मालिक है साडा। तो असा ये तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु का परिवार हाँ, पर आप पढ़ लईए जरूर, सारी संगत पढ़ियो। गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते, फोटो ते इवें आएगी ना, पता ते इवें लगेगा ना, अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख दे चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उते आपां सारे। उस मान विच आके सतगुर सच्चे पातशाह हजूरी विच जिवें उन्होंने माण किया, आपां भी माण करिए ना सारे। तो बोलो सारे बीबियां उच्ची आवाज विच और बड़े कंट्रोल विच, गलबात छोटी छोटी साढ़े को नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सत्संग है, सचखंड है, वैकुंठ है, इसकी महिमा का पारावार नहीं। जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे। सारे पढ़ियो।

हरजी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितार अवगुण को न चितार गल सती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौंपियो नू इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता। यानी साडा दोवां दा सांझा हो गया आपस विच। सांझी गुरु नाल

लैसी पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख मांगे सो देना पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख मांगे।

आया हाँ उदो तो मेरे मन नु शांति हुण ते जेड़े मेरे अंदर वसदे हुए मेरे दुश्मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जेड़े वैरी सन ऐ पातशाह हुण ते ओ भी मेरे मित्र बन गए हैं ओ भी हुण मेरा बुरा नहीं चित वदे सारे ही चंगा चित वदे हैं ये सब तेरी कृपा है ये तेरी मेहर है तू ता मैनू एनिया बख्शिशा कीतिया हैं एनिया रहमता कीतिया हैं पातशाह हुण ते मैं आनंद ही आनंद वेख रहा हाँ चारे पासे खेड़ा ही खेड़ा नजर आउंदा है क्योंकि तेरी कृपा दृष्टि हो गई है ते जदों तेरी कृपा दृष्टि होवे सारे कार्य फिर अपने आप रास हुंदे हन ते सतगुरु तेरी मेहर है तेरी कृपा है।

पर फिर सोचे मना ये जेड़े फुल तू सुचे समझ के लिया है ये ता झूठे किवें जदों फुल खिड़दा है ता पवरा उन्हों संग

पर सोचे है मना जेड़ा दूध तू सुचा समझ के खीर बनाई ए दूध ता झूठ है किस तरह जदू गां चोई दी वच्छा छड़ी दे वच्छा गां दे थान चुंग दे ते किटाणुआ

इसरा रम्यो होया जिस तरह दर्पण शीशे दे विच साडा चेहरा मौजूद है जदों शीशा देखांगे सानू साडा मुंह नजर आवेगा इसे तरह ही वो परमेश्वर है जदों देखांगे

या बाल्टी ओदे विच चाकीए तां सानू साडा चेहरा नजर आवेगा। इसे तरह ही सारे विच परमेश्वर जदों देखांगे ओदू नजर आवेगा। इन्नी गल कही शेर ने धौण नीवी कर ली, गल विच गलवकड़ी पा ली। नामदेव जी कहन लगे, आ यार

तू बेअंत को विरला जाने, को विरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द। रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा, तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा। नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया, तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सबे। मुन इंद्र महाशिव जो करी, तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा।

श्रेय लगेगा, अगे ओ वधेगा, आत्मक उन्नति ओ करेगा जेड़ा गुरबाणी नु खोजेगा, समझेगा, विचारेगा, अमल विच लियावेगा। कहिंदे ने ना कोई समझे, कसूर किसे होर दा तां नहीं। मिसाल भाई साहब ने बड़ी प्यारी दिती, कहिंदे ने समुंदर दीआं तहां विच पता नहीं कितना कुछ पिया। पहला तां समुंदर दी गहराई नहीं पता लगदी, ते जो कुछ धरती ते उपलब्ध है ना, सवाए कुछ कुछ चीजां जिहड़ियां धुप ते खुशकी मंगदियां, बाकी धरती का सारा पदार्थ समुंदर दे अंदर मौजूद है। सोना चांदी हीरे जवाहरात इथों तक के इस वेले तां बंदा अपनी खाद खुराक के मामले में भी समझदा ना, धरती तो पूरी ना हुई ते समुंदर दीआं तहां विच बड़ा कुछ मौजूद। समुंदर दीआं तहां च पाए जाण वाले कितने ऐसी किस्म के पौधे ने जिहड़े हेठां तहां विच ही पलदे ने, तहां विच ही खत्म हो जाते। ये तो शरीरक लोड़ां साडियां कि असीं उधर झाकणे, बाकी बड़ा कुछ इतना है। धरती ते वरतों विच आ रहे सोने नालों दर्जना गुणा ज्यादा सोना समुंदर दीआं तहां विच मौजूद है। कितने हीरे जवाहरात ते समुंदर दी तह ने लुका रखे, पर हथ किनू आउंदे ने। आपां इक मोती की गल करी, सिप्पियां समुंदर दे कंढियां ते पईयां रुलदियां ने, उन्हां च मोती नहीं हुंदे। जिवें असीं गल्लां बड़ियां करने आ, हर गल दा मतलब नहीं हुंदा, हर गल विचों कुछ लभण वाला नहीं होता। लभदा उस सिप्पी विचों है जिहड़ी खास टिकाणिआं उत्ते वड्डे आकार दी, जिहदे विच जीण वाला जानवर, उस सिप्पी दा जानवर जिहड़ा मोती जानवर जिसनूं कहिंदे ने, उह अपनी लभ तों अपने अंदर आए हुए पानी दे कतरे नूं जां रेत दे दाणे नूं अपना लुआब लपेट के मोती बना दिंदा। उह मोती ना केवल सिंगार दे काम आया है, बल्कि उस मोती ने कई बार मनुख दीआं कई बीमारियां नूं कट के दवा दा काम भी कीता। भावे गल वखरी, अज दे वैद चुके कीमती सिप्पियां नूं ही पी के ते मोती कह के वेच देंदे, सिप्पी दा ही पुछता करदे ने, कहिंदे ने वी तां उसे लभ तों ही बणे आ जिस तों मोती बणदा। लेकिन नहीं, सिप्पी सिप्पी है, सिप्पी दे अंदर बनण वाले मोती दी कीमत बहुत ज्यादा है, राजे महाराजे उहदा मुल पाउंदे सन, पर हर कोई तां उस मोती नूं ना लै सकिया। आखिर किसे ने पानी दे अंदर कुद के, पानी दे अंदर गहरी छलांग लगाई। अज तां बड़े साधन हो गए, पुराने समयां च साह रोक के टुंडियां मारदे सन, साह रोक के इन्ने अभ्यासी लोग किन्ना किन्ना चिर साह रोक के घड़ियां बधी, उस समुंदर दीआं तहां विच मोती दी सिप्पी लभदे सन, लभ के लिया के उहदे चों खोज के, फिर हर मोती चों सिप्पी नहीं लभणा, किसे किसे मोती चों लभणा, किसे किसे सिप्पी विचों मोती लभणा, उहनूं विन्न के मुल पाउणा जाणदे सन। इह इक मोती दी गल नहीं, भाई साहब तां कहिंदे ने समुंदर च बड़ा कुछ है, पर उह मोती जिहड़ी है ना केवल गोताखोरां दी खोज दी सिटे दी फल दी गल है, बल्कि एक होर भी गल है कि जिवें मान सरोवर च कहिंदे ने मोती बहुत हुंदे, पर उत्थे किनारियां ते बैठे बगले सिप्पियां ते डड्डुआं नाल ही कम सारदे ने। हंसदी क्योंकि खुराक मोती है, उह सिप्पी मोती वाली सिप्पी चुण के लियांदा है तह विचों, टुब्बी मारदा है, चुण के लियांदा है, उस सिप्पी नूं खोलदा है, पर बड़ी औखी खुलदी। इह जानवर ऐसा घुट के मीटदा है अपनी सिप्पी नूं, बड़ा मुश्किल खुलदा है। आम तौर ते इस मोतियां दे जिहड़े खोजी हुंदे ने इहनूं धुप्पे सुट छड्दे ने, उह मर जांदा सुक के ते विचों मोती कढ लैंदे, पाणी दी थुड़ तों मर जांदा, सुक जांदा, नहीं तां सिप्पी खोलणी इक मसला बण जांदा। लेकिन हंस करदा है मेहनत, उस सिप्पी नूं खोल के मोती जानवर दे मूंह विचों, उहदे कब्जे विचों मोती कढदा है ते कढ के निकल लैंदा, उहदी खुराक है। ते जे उहनूं सिप्पियां चों डिगे मोती लभ जाण ते उहदे बाद उह तहां विच जांदा है, मान सरोवर दीआं तहां च जा के मोती लभदा है, उहदे बिना उहदा जीवन नहीं। हंस दा जीवन मोती है, इसे तरह सिख दा जीवन नाम है, ते नाम इस नूं मिलदा है बाणी दी खोज विचों। कहिंदे जिवें समुंदर विच सरोवर विच बेअंत पदार्थ पए होए ने, मोती भी उत्थे मौजूद है। हंस गहरी टुब्बी मार के सुआस रोक के औखा हो के, जरूर विश्वास रखो नेचै प्रसाद पावेई, अपने छकन जोगे मोती लभ लिया। कहिंदे जैसे पर्वत हीरा मानक पारस सोध, पर्वतां विच हीरे भी हुंदे मोती भी हुंदे ने, पर्वतां नूं खोज के उहनूं खणवारा जिहड़े
खाना पट्टन वाले लोग ने उन्हें पर्वतों नूं पछाण के कि किथे हीरा हो सकता है, किथे कीमती पत्थर हो सकते, खण के मिट्टी छाण के पत्थरां नूं तोड़ के वह हीरे कढ लिआउंदे, तेनेरे कढ नहीं लिआउंदे, उन्हां नूं चमका के पालिश करके उन्हां नूं ठीक डायमेंशन दे के वह संसार च मुल पाउंदे ने। उन्हां दा हीरा बड़ी सख्त चीज है, यह टुटदा नहीं छेती कि इस नूं तराशना, इस नूं एक शेप देनी, बड़े समय तो एक बड़ी पुरानी बड़ी चिड़ी कला चली आई। बहुत औखे होके कारीगर ने इसकी शेप बनाते रहे, इस सुराख देंदे रहे, इनू मुंदरिया गहनिया जड़ते रहे, राजिया महाराजिया के ताजा का सिंगार बनता आया। पर जिन्होंने पर्वतों विचों कढ़ के लिया के दसिया संसार नूं कि आ हीरा जे धन है, उसकी कमाई कमाल है, उसकी खोज। कहिंदे ने खनवारा पर्वतों नूं ते जमीन दियां तहां नूं खोज के हीरा कढ़ लिआउंदा। कहिंदे इसे तरह एक होर भी गल है, जंगल दे विच कपूर हुंदा है, कैंफर हुंदा है, जंगल च चंदन हुंदा है, होर कितने फुल हुंदे ने, पैदा हुंदे ने ते सुक जांदे ने, खत्म हो जांदे ने, लेकिन एक खोजी उठदा है, वह जाके चंदन कपूर ते होर खुशबुआं दे साधन लिया के उन्हां च इत्र कढ़दा है ते शीशियां च बंद करके वह सेंट शीशिया च बंद करके साढ़े तक पहुंचा दिंदा है। उहदी मेहनत नूं दाद देनी पैगी, नहीं तो जंगल च पिया खत्म हो जाता, जंगल च पई वह हवा च रल जाती खुशबू। लेकिन उस मेहनत करने वाले ने, उस सुबासी ने, वह सुबास जिहड़ी है साडे नक्कां तक साडे घरां तक पहुंचाई है, साडे सुंघण जोगी कीती है, उन्हें बड़ी मेहनत की। जिवें उसने मेहनत करके आम बूटियां ते रुखां नूं एक छोटी जी इत्र की शीशी विच बंद कर दिता है ते खुशबू प्रगट करके बाजार च ले आंदी, जिवें पहाड़ां नूं तोड़न वाले, पहाड़ां नूं खणन वाले खनवारे ने हीरा संसार च ले आंदा है, जिवें हंस मर जीवा मान सरोवर दियां तहां चों मोती लभ लैंदा है, इवें गुरु का सिख गुरबाणी विचों एक नाम की गल नहीं संसार दियां सारियां वडियाईयां ते सारियां खुशियां लभ लैंदा, गुरु की बाणी विचों यह दैवी गुण लभ लैंदा है, सत संतोख दया धर्म नूं धारण करदा है, उद्दम नूं धारण करदा है, मस्तियां भी लैंदा है,

अपनी सुरत नूं इहदा चेला बना रहे। सुरत विच शब्द दीआं धुनां गूंजन ते फिर कहिंदे ने जे लभणा इस नूं कुछ साध संगत सचखंड कर। गुरु नानक दी कायम कीती होई सतसंगत नूं स्वर्ग रूप जानदिआं माणदिआं प्रेम भगत परचे होए मेला इत्थे मिल के प्रेम विच आ के भगती विच रत्ता हो के ते फिर कहिंदे ने इक ढंग दसदे ने कहिंदे ने ज्ञान ध्यान सिमरन जुगत। ज्ञान दी लोड़ है ना, समझ दी लोड़ है, ध्यान करन दी लोड़ है, समाधि लाउण दी लोड़ है, याद करन दी लोड़ है। तो तीन मिसालां दित्तियां ने, कहिंदे ने जिवें हंस पानी ते दुध नूं पाड़ के दुध पी लैंदा पानी छड़ दिंदा, जिवें ओह रोटी टुक दे वल मूंह नहीं करदा मोती ओहदी खाण है। इसे तरह जिवें ओहनूं ज्ञान है ना, मोती की है, कित्थों लैणा है, किवें लभणा है। हंस वाला तां ज्ञान होवे सिख दे कोल। ते कछू दी मिसाल दित्ती है, कहिंदे ने इह बहिंदा ना जिस वेले ध्यान ला के कैंटियां बधी हिलदा नहीं, कहिंदे कछू कोलों समाधि लाउणी सिख ते कूंज कोलों सिमरना सिख याद करना सिख। जिवें ऊडै ऊड आवे सैको सत सपाछे बचरे छरिया तिन कवन खलावे कवन चुकावे मन में सिमरन करिया ओ कुआं जाके सया कुआं दूर जाके केवल सिमरन राही अपने बच्चियां नूं पालदी, याद करके ही अपने बच्चियां दी पालना कर लैंदी। ते तू भी याद करके प्रभु दे बहुत नेड़े हो सकदे। ते है तेरा फर्क कोई नहीं जे चेला बन जावे सिख बन जावे गुरु के सिख, तेरा गुरु नाल बड़ा प्रेम है बड़ी वड्डी सांझ है। कहिंदे ने सिख ते गुरु गुरु ते सिख आपस विच इस तरह ही ने जिवें बिरख तो फल ते फल तो बिरख, इन्नी गहरी सांझ है। ते मालक सतगुरु आप जिथे पूर्ण होके वी रूप च वरतदा है उथे कदे सिख दे अंदर इक्की रूप होके की वरतदा है। वडियाईयां सिखां नूं दिंदा पर खोजण वालियां नूं, ते आदि पुरख आदेश कर जिन्हां ने गुरबाणी नूं समझिया है। आदि पुरख वाहिगुरु अकाल पुरख नूं नमस्कारां करदे होए, आदि पुरख वाहिगुरु अकाल पुरख नूं समझ लैंदे ने जान लैंदे ने, उहनां दे वास्ते जीवन अमृत दा सोमा, जीवन अमृत दा वेला, जीवन अमृत दी घड़ी बन जांदी है। ते जिहड़े अमृत वेले उठ के इस काम

पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक बार मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आए। ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बोताए। मथुरा कहिंदा है पट के जब तक साढ़े भाग नहीं समझागे, असी संसार विच विचर रहे सन, लेकिन कलयुग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन होए, ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जन विच कोई फर्क नहीं है। क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज, और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावे जनकाद जुगाद जुगेसर, हर रस पूरन सर्व कला गावे सनकाद साध सिदादक, मुन जन गावे अचल छला गावे गुण तोम अटल मंडलोए, भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानी। उस गुरु नानक दे गुण जदों राजे जनक दा दरबार लग्या सी, और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन। क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जिसने बड़ी तपस्या की, और भगत वड्डा क्यों गिणिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नू माया तो निर्लेप रखिए। सात संगत बोलो श्री। ते भाई गुरदास जी कहिंदे इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। ते एक वरां दा जिक्र, राजा जनक देव लोक नू गया, देवते भी लोचदे हन कि कोई जपण वाला साडी पुरियां विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नू देव लै के देवते लै के अपनी पुरियां विच जा रहे सन, ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई। राजे जनक ने पुछया ए कौन रो रहे हन, तां देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हन, जिथे पए होए जीव अपने कर्मां दे अनुसार भोग भोगदे हन, क्योंकि इन्हां जीआं ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती। इस वास्ते भगती ना करन करके इन्हां ने अपना मनुखा जन्म जिहड़ा हीरे लालां तों भी महंगा सी, जिहड़ा स्वास हीरे लालां तों भी महंगे सन, इन्हां ने मिट्टी विच रोल दिते। ताई आखिया बंदगी ना कीती आ हीरा जन्म पा के, जे तेनू मनुखा जन्म वाहिगुरु ने दिता है और तू बंदगी नहीं कीती, तां तू अपने मनुखा जन्म नू कौडियां दे बदले वेच छड़िया, उस स्वासां नू कौडियां दे बदले वेच छड़िया। ताई आखिया

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी का शुकराने का शब्द है सुलही ते नारायण राख। समय का बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगती के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे। गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन, इस दे मन विच बड़ा दुख सी कि गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है। अपने सीपा सलार नूं हुकम दिता भई तू कश्मीर नूं जा रहे हैं जंग करन लई, ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है, उस नूं भी सोधदा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु। ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं लग्या तां सिखां ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकित है, प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीये मता दोए मानक पहुंचावो, तृतीये मता किश करो उपाया, मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। हजूर अगे बेनती कीती गई कि महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नूं पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो, कुछ उपा जरूर करो। ता धन गुरु अर्जन दे पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुली समेत स्वाह हो गया। इस शुकराने वजों हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख। सुलही का हाथ